नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 15वीं तिथि। तदनुसार आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस एफएम फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR OTT प्लेटफॉर्म वेब्स और इंटरनेट के जरिए ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से भी आप हमें अभी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 9:40 से आप सुनेंगे गोरबंद लोक संगीत का कार्यक्रम, 10 से आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 से आप सुनेंगे गाने ने त्राने ने, 11 से आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

युवाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे से, और 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम पणिहारी, 6:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और 6:20 से आप सुनेंगे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी का स्वाद, 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, 7:30 से आप सुन पाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 8 बजे से आप सुनेंगे हेलो कोरबंद, 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, और 9:25 से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू। पहले चरण में 1,34,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स का काम पूरा और भारत ODOP संगम आज से नई दिल्ली में। प्रदेश के 28 ODOP उद्यम अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से कई नेता वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर के मानसरोवर से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस अवसर पर सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की इस सेवा यात्रा को राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार रेपो दर में बढ़ोतरी वर्ष 2023 में हुई थी, जब RBI ने दर को 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। वर्ष 2023-24 में दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद साल 2025 में ब्याज दरों में कटौती शुरू हुई। फिलहाल RBI की नीतिगत रेपो दर 5.5

2.5% है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य से होकर गुजरने वाली 3 नई रेलगाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है। इनमें भुज बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। ये रेलगाड़ी कोटा सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी और भरतपुर होकर चलेगी। वहीं हरिद्वार ओखा एक्सप्रेस और हरिद्वार वेरावल एक्सप्रेस अलवर जयपुर अजमेर

0: बंधन सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं देने को कहा है। बैठक में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तथा विद्युत और सिग्नल उपकरणों के रखरखाव की भी समीक्षा की गई। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में सतत कृषि उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 21 दिन के इस प्रशिक्षण में देश भर के 82 से अधिक वैज्ञानिक और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान कृषि और संबद्ध विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन व्याख्यान और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कृषि तकनीकों का विकास किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
1: मुख्य रूप से इस ट्रेनिंग का जो फोकस है वो हमारे जो इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट है कृषि के अंदर, उन सब का होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें सभी डिसिप्लिन्स का इसमें कवर किया गया है, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हॉर्टिकल्चर से है, एलपीएम से है, इसके बाद में एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, यानी सभी सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर का इसमें समावेश होगा लेक्चर्स के अंदर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल 25 जनवरी से होगी। 28 फरवरी तक चलने वाले इस चरण में लोगों की गणना की जाएगी, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी की विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक नागरिकों को स्वगणना की सुविधा मिलेगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और फील्ड कार्यों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनगणना सुचारू रूप से संपन्न कराने को कहा, साथ ही इसके लिए कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि पहले चरण में 1,34,091 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य में कम बारिश के कारण पानी की समस्या को देखते हुए गौशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम जी भाले ने कल जयपुर में गौशालाओं में चारे और पानी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में गौशालाओं में साफ पीने के पानी की नियमित आपूर्ति और चारे की उपलब्धता, भंडारण तथा गुणवत्ता की निगरानी करने को कहा। साथ ही कमी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिलों के अधिकारी और गौशाला संचालक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। जयपुर में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। राजकीय महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के तहत लगाए गए इस प्रशिक्षण शिविर में पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग टीम की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। कॉलेज आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर शोभा राम शर्मा ने बताया कि अब तक 15,000 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
2: कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उनको आत्मरक्षा, कई बच्चियां जाती हैं, अनहैपनिंग होती है उनके साथ, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा शुरू में 33 महाविद्यालयों में ये स्कीम शुरू की गई थी। उसके बाद 2025-26 में 314 महाविद्यालयों में शुरू की, जो कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में शामिल की गई। उस 25-26 में हमारी करीबन 15,800 छात्राएं इससे लाभान्वित हुई। इसमें पुलिस विभाग के साथ मिलकर के पुलिस विभाग के अधिकारी और ये लड़के बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चियां कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपट सकें।
0: भारत ओडीओपी संगम आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम भारत मंडपम में 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और सह विक्रय कार्यक्रम में देश भर की 600 से ज्यादा इकाइयां और प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 38 ओडीओपी उद्यम अपने विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें रत्नाभूषण, मार्बल, हस्तशिल्प, वस्त्र और परिधान शामिल हैं। 12 में डीएपी खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें खाद विक्रेताओं और गोदामों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। कृषि विभाग

0: के संयुक्त निदेशक राजेश विजय ने बताया कि अक्टूबर में जिले को 15,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। अब तक 3,374 मीट्रिक टन डीएपी जिले में पहुंच चुका है।
1: राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार नियमित रूप से उर्वरक की आपूर्ति करा रही है। अब रबी सीजन 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। पूरे रबी सीजन में 12 जिले में यूरिया की 90,000 मैट्रिक टन और डीएपी की 35,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। अभी माह अक्टूबर में यूरिया की 20,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी और डीएपी की 15,000 मैट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। यूरिया आज 1 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर 5 दिन में हमारे पास 20,000 मैट्रिक टन की जगह 15,000 मैट्रिक टन हमारे पास आ चुका है और वो उपलब्ध है। साथ ही डीएपी जो 15,000 मैट्रिक टन पूरे महीने आएगा उसके विरुद्ध अभी तक 3,374 मैट्रिक टन आ चुका है और शीघ्र ही 2 से 3 दिन में पूरी रेक क्रफ्टों की लगभग 2,500 मैट्रिक टन डीएपी आ रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू। पहले चरण में 1,34,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स का काम पूरा। और भारत ओडीओपी संगम आज से नई दिल्ली में। प्रदेश के 28 ओडीओपी उद्यम अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चीफ चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्री राम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है वंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे हरिहरन, अनुराधा पोडवाल और शेखर कल्याण की आवाजों में चंद भक्ति रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है घूमर लोक संगीत का कार्यक्रम।

दोस्तों आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा मिश्रा और उनके साथियों की आवाज में लोकगीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंद। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चरण से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रिक्वेंसी के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन सकते हैं। प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ों ने AIR OTT प्लेटफॉर्म वेब्स और अगर आप इंटरनेट के माध्यम से हमें सुनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर आइए। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है गाने पुराने जमाने के। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हरजाई के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए किशोरदा और उनका साथ दे रही हैं आशा भोंसले।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने, संगीत मदन मोहन का है और इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म हकीकत से। इस गीत को आवाज दिया लता जी ने, मदन मोहन का संगीत है और इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

दोस्तों कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के इसी कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस गीत को आवाज दिया लता जी और उनका साथ दे रहे हैं किशोर कुमार। इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को आवाज दिए लता जी और उनका साथ दे रहे हैं सुरेश वाडेकर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत को लिखा है नरेंद्र शर्मा ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के छिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म पद्मावत के इस गीत से। इस गीत को आवाज दिए नीति मोहन ने और इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ और गरिमा ने मिलकर। संगीत दिया है संजय लीला बंसाली ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म स्त्री से। इस गीत को आवाज दिए अंश किंग और सचिन जिंगर ने। इस गीत को लिखा है वायु ने और सचिन जिंगर ने संगीत दिया है।

0: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
0: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: दोस्तों, ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गाने ने तराने ने। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म जीरो से। इस गीत को आवाज दी है सुखेंद्र सिंह और उनका साथ दे रही है दिव्या कुमार। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने इस गीत को संगीत दिया है।

हमारे केंद्र से सप्ते में दो बार किया जाता है, बुधवार और रविवार रात्रि 8 बजे से। इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर है 240-168 और नागौर के फ़ोन नंबर है STD-015-85। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म लुक्का छिपी से। इस गीत को आवाज दिया मिक्का सिंह और उनका साथ दे रही हैं सुनंदा शर्मा और निकिता गांधी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत है।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर का ये प्रसारण आप हमें FM फ्रिक्वेंसी जो कि रेडियो पर तो आप हमें सुनते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग माध्यमों से भी आप हमें सुन सकते हैं, जिसमें न्यूज़ ऑन AIR जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है उस पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर है उस पर भी आप हमें सुन सकते हैं। अगर आप हमें इंटरनेट पर सुनना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी हमें सुन सकते हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म भारत से। इस गीत को आवाज दिए श्रेया घोषाल और उनका साथ दे रही हैं नकास अजीज। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और विशाल शेखर ने इस गीत को संगीत दिया है।

डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म भारत से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव गेम से। इस गीत को आवाज दी है संगीत हल्दीपुर ने, गीत को लिखा है कौशल मुनीर ने और संगीत भी संगीत हल्दीपुर का ही है।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म पुष्पा 2 से। इस गीत को आवाज दिया है श्रेया घोषाल ने, गीत को लिखा है रकीब आलम ने और इस गीत को संगीत दिया है देवश्री प्रसाद।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के छिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस एफएम फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: संगीत

बेगम अख्तर की आवाज में ये गजल आपने सुनी, और अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में ये गीत। लेस्ली लेविस का लिखा हुआ गाना, संगीत लेस्ली लेविस और श्री जयदेव का, एल्बम का नाम आत्मा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज मजरू सुल्तानपुरी के बोल एल्बम आपकी आशा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा चिनॉय की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम है, आवाज, गीत और संगीत जयवालिया का।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें साहिर होशियारपुरी के शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल गोस्वामी की आवाज में ये पारंपरिक रचना, संगीत भी वेणुगोपाल का है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: रीटा गांगुली की आवाज, संगीत विश्व मोहन भट्ट का।

0: कार्यक्रम
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

झूम झूम गालन को जाए झूम मदिन की लड़िया कारी कारी प्यारी प्यारी मस्तवारी रक्त नारी लागत कटारी न्यारी कजदारी लखियां राजे महाराजे सब साजे बाजे गाजे लाए भेंट उपहार तलवार ने के धनिया फिर धीरे धीरे धीरे धीरे कपीर कपी दादा सही ऊंचा चो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख

0: विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: दोस्तों, विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी है। फिलहाल एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2026 को फोन इन का विषय है सरसों, गेहूं और चने की फसल की बुआई हेतु तैयारी एवं देखरेख। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशु जोशी, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 240-168। नागौर का एसटीडी कोड है 015-82। अब वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: पावन बोल हर भंस

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
4: यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत।

0: सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: येसुदास और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

शेर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार न

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

लीजिए अब सुनिए हरजाई फिल्म का गाना। आवाज़ किशोर कुमार की है, विट्ठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंदिश फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि यह प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है, तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
0: इस अवसर पर राजधानी जयपुर में भी सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष का कार्यकाल गौरवशाली रहा है। उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया और जनविश्वास को राष्ट्र निर्माण की शक्ति में बदला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आए बदलाव का असर आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीति गत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 2025 में रेपो दर में कटौती का दौर शुरू हुआ। इस बीच खुदरा महंगाई अगस्त में बढ़कर 4.82% हो गई, जो पिछले महीने 4.45% थी। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दिवस खेतों में कपास उगाने वाले किसानों के योगदान को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि कपास की खेती से कताई मिलों, जिनिंग इकाइयों, कपड़ा निर्माण और परिधान कारखानों सहित पूरी मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। श्री सिंह ने कहा कि देश में 60 लाख किसान कपास की खेती से जुड़े हुए हैं। हथकरघा उद्योग से बड़ी संख्या में छोटे उद्यम जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की द्वितीय समिति में भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त और अनुमानित वित्त पोषण उपलब्ध कराने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में इन देशों का अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। अपने संबोधन में श्री जोशी ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और घरेलू संसाधन जुटाने के क्षेत्र में भारत के अनुभव साझा किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2026 को फोन इन का विषय है सरसों, गेहूं और चने की फसल की बुआई हेतु तैयारी एवं देखरेख। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशु जोशी, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई, अब वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।

क्या करेगा सुन के जमाना, तुम सुनो तो कहे। जहां जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, किसी खास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात की फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की मखमली आवाज, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आजमी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी की सुनना सम्मान बोधक सूचक है। सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है। सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है। खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाली हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वहीं खूबसूरत होते हैं जहां बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुंच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है। कहने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोलें, ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। ये गाना लता की आवाज में है, शंकर जयकिशन का संगीत है। किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

0: ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है, यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है, कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: परंपरा रही है गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझकर चेतना में आत्मसात किया जाता था और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह, आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था, जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए। भाषा में शालीनता, परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, ए जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा, जा

पेड़ की पहाड़ी है कांटे की लाला।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सके। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं, तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही, जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप, और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, न बोलने की न चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एस डी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं, एक खूबसूरत समझदारी है। जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये जरूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार जमीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते, मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर की गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलिया की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूं और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए हमें।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है, सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मनस्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है, मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो जरूर उसे माफ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

0: का मिले।
1: जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है, मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहां भी संभव हो क्षमा को अपनाइए। दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ कर देने से ना केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहां संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सब भी लें, जहां संभव हो माफ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहां संभव होगा दिल से माफ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर

0: देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि

0: के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
3: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार

0: काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
1: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
3: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
1: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना. लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का.

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका,
1: क्या बात।
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानी अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी, क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेली बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी। और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
2: क्या बात है,
1: शब्द हमारा और विचार आपके।
2: बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
1: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
2: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो।
2: बिल्कुल ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना, और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है, और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने, इस तरह

0: कि जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पर खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
1: आता नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल, उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
0: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
1: बिल्कुल देगा, और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
0: जी,
1: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल की महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़े। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
0: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो इस बात का भी ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है, क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
1: बिल्कुल, और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
0: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना। कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है। इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही, शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
0: और हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे,
1: तीनों चीजें आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था,
0: क्या कहा?
1: जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं, आज भी
0: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
1: बिल्कुल, उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने दे।
0: क्या बात,
1: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
0: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहे तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है, और अनुशासन जो है वो हमें
1: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
0: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा है वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल, कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
0: और भी आगे संदेश हैं?
1: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको

0: चंचल।
1: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपनी सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और इसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, तो सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है रंग लाती है, है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से 4 मुख्य होते हैं, और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन,
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
2: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो वो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा। यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
2: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है, और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अब इसे GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है, और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
2: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ,

0: और इस समय घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: बिल्कुल।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया, और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
4: जी।
3: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं, और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
4: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
3: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये, और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
4: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं, उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले, इसी पर होता है।
3: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य है, और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
4: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार, परिवर्तन, साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
3: करना। बिल्कुल,
4: तो चलिए अभी गीत सुन ले
3: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो
0: कुदरत ने बनाया है। जी तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर जीव को उनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है, मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी जल पावक अग्नि गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना
1: की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
0: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हाँकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलांज कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती हैं नैना भिराम लगती हैं।
1: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
0: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
1: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
0: बिल्कुल।
1: और अब हमारे हाथों में है कि हम
0: गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई
1: हाँ
0: में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की मिठाई।
0: बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा,
0: ठीक है।
1: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, गाड़ी गाड़ी
0: चाशनी लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई, इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गर्म गर्म घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहे तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं, क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है।
0: हाँ।
1: और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ पिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेकें और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है
1: जी,
0: ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी हैं शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है ये।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है
1: और
0: ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है।
1: जी, और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी उन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय, आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ, खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए, आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर
0: बिल्कुल
1: सकते
0: सही
1: हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही होने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का मजा
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
0: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर ये लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है।
0: गुड़ ही गुड़ है,
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
4: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरबिंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें श्री नीलकंठ बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
4: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे, पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
3: हुआ।
4: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे। तो ये आई थिंक उद्देश्य था, इसलिए हनुमान अंश और श्री नीलकंठ बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
3: तो नीलकंठ बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
4: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
3: जी।
4: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज आपकी लाइफ का डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूं तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी। तो इस तरह से तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
3: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या

0: की जो इतनी अपनी तहजीब है
1: जी।
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया। तो पहले तो भाषा सुधरी वहां जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है। तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे। तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
1: अच्छा।
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया। एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया। और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था। तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था। तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था। और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता, राय उमरनाथ बली नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ। तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था।
1: जी,
0: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है। तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस। बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था, वो वही दुनिया थी हमारी
1: जी।
0: तो उसके अंदर की जो खैर, कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
1: जी जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी। एज ए वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं। और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं। और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं। और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना चाहिए।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं। हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है। और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
1: जी जी।
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूं। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा, उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन पहले सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी, खुद से मैंने कंपोज की थी, वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को, बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनी वन ऑफ इट, आई वोंट माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा देता
1: हूं। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं
1: जी।

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था, पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं, पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए, तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा, तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी।
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है, अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके, तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई, और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से, वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
0: अभी सुनाइए
1: हनुमान चालीसा चैट, एज़ इन
0: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
1: जी, जी।
0: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
1: नहीं
0: तो,
1: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
0: ईस्ट को
1: ही करते हैं, भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन. अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पास, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम. सदा रहो रघुपति के दासा. तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे. एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो. ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकटहरण मंगलमूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों सुरभूप. हृदय भसों सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है. इसीलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां अवनीति दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं. और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं. कोई हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्टदिन अवधिदाता असबर दिन ऐसा वर सीता दिन दिन जानकी माता. तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं. ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे. जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे. इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
0: जी,
1: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं. तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेंपल्स हैं वो पेरू वगैरह में वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000 साल पुराने टेंपल्स हैं
0: जी. बिल्कुल,
1: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट ही इज पॉपुलर. कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा.
0: बिल्कुल,
1: तो
0: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं डर से निजात पाने के लिए. हम सब भी वो करते, डर लगता था,
1: डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ना
0: शुरू करते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. अंधेरे कमरे में पार करना है
1: करेक्ट,
0: तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
1: है. वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप. लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
0: जी जी.
1: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना. और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना. मन क्रम वचन ध्यान चुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे. हाँ, जी
0: बिल्कुल, सकारात्मक भाव पैदा होता है. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते हैं?
1: मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ.
0: जी जी प्लीज सुनाइए.
1: जी जी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. जय सिया राम जय सिया राम.

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: लेकिन वो शायद एनीवेज, तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कैकिन सिंह। उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था, 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूं या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूं, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स डेवलप, फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक

0: वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है, देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए, एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया, जिसमें 30 सीटें थी, तो 30वां नंबर रैंक मेरा आया। और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई हैड टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन, तो 4 साल 5 साल वहां पे, फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4 से 5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन इट, एंड आई डू इट प्राइमरली फॉर माई सेल्फ। तो मतलब वो कंप्लीटली मेरे, उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता। सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे। लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स, डेकेड साल से। तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: था,
1: बिल्कुल,
0: तो हाँ। बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना रखा, फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इंफॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज ए इंडस्ट्री, के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, 3rd वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू गए 4th वीक से,
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है, और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी। मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि ही सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ, शंभो शिव शंभो।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो,
2: अरे वाह क्या बात है,
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी, और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़,
2: तो ये अभी की फिल्म है, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम ने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते, और मैं

0: कि उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लेके आया।
1: अच्छा।
0: फिल्म का नाम था, उस वक्त उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया। कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को। लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूं मेरी सोच है। हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ। और मेरी बात उनसे 2 साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में उतने ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
0: जी।
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के गायक हैं, तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
0: हाँ, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ जैसे मैंने बताया, बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूंकि तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
0: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था।
1: अच्छा।
0: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन
0: है वो
1: है।
0: और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी समय फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूं कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू। बट चूंकि ये मौका था कि वहां पर था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी जी,
0: सागर में नैया डाल दे कौन, उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है,
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डाल दे। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डाल दे क्या, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
1: जी।
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स थी, भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई या 500 के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: बहुत मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो जिसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, जो कनेक्ट फील होता है ना आपको,
0: जी,
1: आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है, वो हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में,
1: हाँ।
0: ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम फेवरेट।

0: वो सेंक्टिटी चली जाती है,
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते
0: डिस्ट्रैक्शन
1: हैं।
0: होते रहते हैं जी।
1: सही कह रहे हैं, और ये बात है, कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में,
0: हाँ,
1: ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं?
0: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल
1: दिल की
0: टाइम
1: फिल्म
0: फेवरेट।
1: से।
0: हाँ।